0: विंगमैन।
1: हो आज खुशी का दिन है, आया निकला मुहूर्त चंगा, भाई सूट पहन के बन